0: काम कर रहे हैं। और उसके बाद ही एक खबर आई थी, आपको याद हो, कि जिसको नेतन्याहू की ऑफिस ने कहा कि युद्ध के बीच में नेतन्याहू यूएई गए थे, और एक बड़ी अजीब सी स्थिति बनी थी जब यूएई ने एक सार्वजनिक रूप से डिनायल किया था इस खबर का, लेकिन नेतन्याहू ने जवाब दिया था कि भाई हमारे जो रिश्ते हैं वो 2020 में हुए इब्राहिम अकॉर्ड्स के तहत है, हम कोई छिप छिप कर कोई प्रेम कहानी में जो है हम शिरकत नहीं कर रहे हैं, ये कोई सीक्रेट लव अफेयर नहीं है। देखिए, इसको दो चीजें ड्राइव कर रही हैं, एक इसराइल और यूएई के बीच में आज की तारीख में दोनों के लिए ही जो सबसे बड़ा एनिमी इस रीजन में है वो ईरान है, और ईरान ने भी कह दिया है कि यूएई आज हमारी तारीख में जो है हमारी नजरों में दुश्मन है।
1: सिगी जी गल जी तुसी सुनी है ते इंटरनेशनल लेवल दे उत्ते, दूजे पासे इसराइल दा कहिंदे वी टर्की दे नाल वी ए टकड़का हुण वधण दे चांसेस जिहड़े दस्से जा रहे ने, ते उहदे बारे वी गलबात करांगे। उहदे नाल नाल तुहानूं दस दईए वी वंस अगेन जिहड़ी सुर्खियां बन गईआं इंडियन ऑफिशियल्स नूं लै के, कैनेडा दे यूएस दे ऑफिशियल्स ने अनाउंस कीती चार्जिस लाए ने, अरैसट किए गए ने कुछ एक लोग, क्राइम बस्ट किया गया जिद च हरदीप सिंह निजर उन्होंने दे कतल की भी गलबात जी की गई, दसाया गया भी किस तरीके दे नाल ना ने इंडियन फोर्स जी ने इंडियन लोगों का भी हाथ जरा दसा जा रहा है, तो काफ़ी लोग जो इन कस्टडी ने ओपरेशन हार्ड बोल इन कहें वैसे, तो जिद मेजोरिटी ऑफ बंदे जोड़े ने वह नज़र आ रहे हैं फोटो इन कस्टडी लगते हैं, थोड़े बहुत जोड़े ने आउट ऑफ कस्टडी लगते हैं, बट जिद हरमनजीत सिंह जड़ा है वह बहर दसा जा रहा, हरमनवीर सिंह गुरप्रीत सिंह जड़ा वह बहर दसा जा रहा, गुरिंदरजीत सिंह जड़ा बहर दसा जा रहा, अमृतपाल सिंह बहर दसा जा रहा, बट जे अरैसट किए गए ने उन्होंने इन दिस्ट जी थोड़ी जी लंबी है, बट मैं लगता भी मैं वही पढ़ सदा। एक जग्गू भगवानपुरी दसा जा रहा, जग इन कस्टडी लगता है, गोल्डी बराड बहर है, तो बिश्नोई कस्टडी से रोहित गोदारा जड़ा ये बहर है, फिर हरमन नाँ का मुंडा जड़ा यदा पूरा नाम पता नहीं की है, तो एक कौर है पिछे हरदीप कौर या कुछ इदा लिखे, तो ओरटिज जड़ा एक अफ्रीकन भाईचारे का काला मुंडा है, तो बैट सिंह अमृतपाल बैट पता नहीं कुछ इदा का नाँ है, हर्षप्रीत सिंह फिर एक होर सिंह तो फिर एक होर सिंह फिर एक सलस पुबिया या पुबिया जो भी कुछ लिखा, तो सरमन फिर सालसा मोरिनो गुरिंदर सिंह देओ जड़ा ये भी बहर दसा जा रहा है जी, नीतीश कौशल जड़ा भी बहर दसा जा रहा है, हरदीप सिंह कस्टडी जे हरजोत सिंह जड़ा ये बहर है, फिर एक होर हरदीप जमनदीप सिंह ये भी बहर दसा जा रहा है, ये कस्टडी से हरमनवीर सिंह जड़ा वो बहर है, उर्तजा उंगरू कुछ ये भी इन कस्टडी है, तो एक खैरा है हरप्रीत खैरा जड़ा जी ये भी कस्टडी से, बौजा जड़ा एक कस्टडी से, तो नो नेम गिवन कमल वैसे दा ते ये भी कस्टडी तो बहर दसा जा रहा है, सुखराज कंग जड़ा ये भी बहर दसा जा रहा, बागड़ी साहब जड़े ने भी ये भी कस्टडी च फड़े गए ने, ढांडे होने ने एक ये भी कस्टडी च ने, गुरप्रीत सिंह जड़ा बहर दसा जा रहा, गुरदेव सिंह जड़ा एक कस्टडी च, तो गुरम कुछ यदा हैगा जी इन कस्टडी, अमृतपाल सिंह भी बहर है, तो प्रिंसपाल सिंह इन कस्टडी है, गुरतेज सिंह इन कस्टडी है, गुरिंदरजीत सिंह जड़ा ये भी कस्टडी च, सो ये जड़िया दोनों कंट्रीज के एक बिश्नोई गैंग फड़ के इन्होंने, तो ये जो बंदे फड़े ने प्रोमिनेंट इंडियन रिलीजियस पोलिटिकल तुम्हें पता भी निजर हुण दा कतल दे केस दे विच जिहड़ा कि 2023 दे विच होया सीगा, एक ग्रुप का नाँ जिहड़ा उहदे नाल रिलेटड है टैररिस्ट एंटिटी इन्हों डिकलेयर करता गया सितंबर 2025 दे विच, बट वी गो टू सेंस द स्केल ऑफ दिस एक्शन बाय द पुलिस ऑफिसर्स एंड इन कैलीफोर्निया एज यू से विद इन द लास्ट और सो आर जिहड़े ने बिल सियाली नाँ दे फर्स्ट असिस्टेंट ने यूएस अटॉर्नी फॉर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलीफोर्निया इन्होंने दसा भी गोल्डी बराड का भी जिक्र किया, तो नाल दी नाल बिश्नोई तो फड़े गया, बट सिख लीडर का कतल के केस के भी यदा नाम जोड़ा वो लिया गया। अज दबर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गई मैं लगता, आप शुरुआत तो बड़ी स्पोर्ट्स तो की

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: आज फिर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो रह गए ना फिर पीछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: की तुहाडे परिवार विच किसे नू होम केयर दी जरूरत है? अपने ही घर अंदर अपनी बोली विच होम केयर प्राप्त करन लई YYC होम केयर वालियां दा अगला संदेश सुनो।
4: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम वीरपाल कौर टाटा, मैं फाउंडर हां YYC होम केयर सर्विसेज दी एंड मैं पैरामेडिका बाय प्रोफेशन। एट YYC होम केयर सर्विसेज असी घरां दे विच होम केयर प्रोवाइड करदे हां जिदे विच असी सरकार नू सिद्धा बिल करदे हां अंडर क्लाइंट डायरेक्टर होम केयर इनवाइसी प्रोग्राम। इदे लई गवर्नमेंट फंडिंग हैगी आ। उदे लई तुहानू कोई भी क्वेश्चंस होन तुसी सानू फोन कर सकदे हो 8257600983 ते। थैंक यू।
5: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
6: कनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला फटा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757।
5: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।
6: नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका। फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई

0: ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਮੀ ਨੂੰ 403-617-2111 ਤੇ ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 403-479-7007 ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ निगा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 587-617-4696 587-617-4696 ओएसिस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 587-617-4696 कैनेडा विच रहंदियां इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है किसी भी तरह दी इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसपी दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
1: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लगवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट एम्पायर फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार
3: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
0: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
3: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
0: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
0: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू
3: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
0: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर
3: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
0: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
0: 403-835 बाय अपने घर दा दूजा नां आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती
3: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ
0: वधिया घर खरीदना पैसे बचाउणे ने सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल
3: सिर्फ घर खरीदण ले ही नहीं बल्कि बेचना भी होवे तां बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल
0: घर खरीदण ते बेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते

0: शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारे लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सीधे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696 ओएसिस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696 कनाडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है किसी भी तरह दी इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसपी दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस ले नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन होर जानकारी ले पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
1: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लगवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street North East Calgary कैलगरी कारपेट Empire. Phone number 403-510-1515 2935 19th Street North East Calgary.
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तों लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार
3: रेडियो सरसंगम 94.7 FM ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ 587-832-1208 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ 588-832-1208 ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ YYC होम केयर तो वीरपाल कौर उन्हां दी कंपनी घर विच बुजुर्गां दी सांभ संभाल लई सेवावां दिंदी है तुहाडे घर विच अगर बुजुर्ग हन उन्हां नूं हैल्प दी लोड है तां YYC होम केयर कंपनी मदद करेगी पंजाबी विच भी सेवावां दिंदे ने ते नाल बिल सरकार नूं भेजा जाएगा फोन 825-760-0983 ओएसएस स्माइल मेडिकल सनरिज दे विच ए मेडिकल क्लिनिक है जी एक्सपर्ट डॉक्टर ने कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है फोन नंबर है 587-617-4096 587-617-4696 मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स कैनेडा की सब तो बड़ी डीलरशिप जितों तुसीं वधिया डील लैण लई गौरव शर्मा होरां नाल संपर्क कर सकते हो जी फोन 403-903-7657 ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਾਪਰੇ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ 403-404-3500 ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ 40 ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਿਟੀਸਕੇਪ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 403-936-7777

0: जिम्मेवारी। 5876174696। कैनेडा विच रहंदियां इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, आरईएसपी दियां वधियां सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस ले नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी ले पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
1: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060, 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
3: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
4: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
3: जानिया पछाणिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
4: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
4: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
3: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
4: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
3: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
4: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
4: 403-835-2222। अपने घर दा दूजा नां आ सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
3: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
4: वधिया घर खरीदना, पैसे बचाउणे ने, सिरदर्दी तो भी बचना, ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
3: सिर्फ घर खरीदण लई ही नहीं बल्कि वेचना भी होवे तां बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
4: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
3: रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
4: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचन दी प्लानिंग, मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor।
3: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।